0: आदमी हर गडिंग हर गड तेतरिस मिनट में दिवे राज्य गड और मगनिस ने बाजर हिंदने में दिवे प्रोग्राम गाल में वाहद काला में गेंदा मावलो की माले का कुई कुदिन बेते मुगे खिदमत दे गे कुदिन नकुर मतवा मसल तक बे को तो ख्याल फुरत हिस्सा कर मट का मिहार और मना बेफल का गोल फमियार में
1: नादिया अस्सलाम वालेकुम नादिया
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू
1: बाजर हिंदने के कहता
2: बेफलन हाल
1: के रे तो अलगुन में हमारे रंगल उंगे तो ठीक कोलम में साद रंगल तो नादिया
0: कौन कहल कंतर तक तो तजरबा करो बने को बात तो मैं
2: मतलब मसल तक हम लोग इधर ही पड़ा को निकाल ऐला वाला है देनेती मराशुंग है देनेती ममाले फोन भी ऐला वाला फुरता म फोनों का गेम में सम ऐला वाला का देह हर था उन नानी देख तो देह हर उन्हें वो नहीं बस हाथर फास गया कर दान जे उन्हें देंग हम किया वाह का कुरिया का नुदे वे देंग का गिना पे फोन का वाह क्या फाहा कुरे भी है अक्कुदिन तिबे को अक्कुदिन ना अक्कुदिन दारी फुल लैग में अक्कुदिन तिबे कोटरीगा बैंक बेड जहाला फोड़ना नहीं अधर दिपरातु का अधर वें तो देंगे कल हम दारी फुला की दंबर है लागें किए वा कुछ जे एन का एन गाड़ी गाड़ी का नुकी नुए किए वे ने वाड़ वाड़ देंगे कानु किए वे ने नुए नी देने देंगे ने वारा बोलो ताकुली फक बाईया कर भी ये तो देंगे गे गदिमा अभी थामें गे देंगे एन है लागें एन का लाइट है नुजे से ने एन कुदिन तिबे ने निदाफा हमें कन किए वा कुदिन ने बेस नोति भी एक तंतनु का वजीफा है ड्यूटी अदा कुदिन तिबे निकुदिन एक कल मैं ड्यूटी निम्मा फैसे मैं निदा नहीं था उन्हें हम किया वाकुदिन नो भी मैं भी उन्हें नोइस ना नहीं था मैं उनके विष्णु में नहीं ना नहीं था एक ओता का शेद तो देंगे कल किया वाकुद जाए उन दागु आने था देंगे ये इस कंधी मावे देंगे एक कल दो मुंगे कंधा में समय एक अंबे स्टाजरी बाकुरं जे उन्हों कुदिन ना कंडा ला फोन ना निवाकी दो है कम दत्ता के इच्छी दत्ता में गेच्छी दो निमे कम करनु है हमें दोस्त निमे हीरो है हमें के दत्ता में गेच्छी दत्ता के कुदिन गेच्छी दो निमे दे कुदिन ना कवे फुर्सत है नुली पे ए बस तजुर्बा है दिमागी का में देन हम केम के कंते दे तो हम डिप्लोमा आया हमें कुछ देंगे मुले मुले मुकुस दे मारा हिवर को गे एक गे अनेक गे देंगे हिंगोस हम लारी दी गाल गण में गे तो हम लारी फोन में आगे अनेक का हम पाहुं एम में पाहुं हो रही क्या गालगण में वारं हरा तो कुरी हमें का निफ़ायसा है ना वारं इच्छे ही फोन में आगे इंगे तो इच्छे ही सम वारं इच्छे ही फोन में आगे अनेक का ये कोविड का आला तो गए दिमाग भी माइके कुदिंगे कंतर ते सालगण में कोट दी गए इन्हें न दांती भी मा ये हो रही हाँ का मैं कोक गए दें दर फुले समय इंगे का दें नंगलो कंका में सूरी इंगे तो दें नंगलो कंका है कमा को गिना ही दें नंगलो कंका में गवाह के तबड़ा देख
0: के न दिमाग मसल तो गवाह कमी
2: दारीपुर समय में पाहुन डिप्लोमा हमें दिए सिर को बेनु कुरा पाहन है हम बेनु कुरा थी हमें ना पाहन आवेश दौड़ना हमें दिखा का दें हिंदू ने साय नुली बेने हिंदू ने मी सह बोला ने विस्को दो और एक गाने के सह बोला आप देंगे नहीं मुनी दें कल कुदी कुदीन साहबो कनु ना नीचे देंगे मीन साहबो गाने के बोमी देनु बोन बोमी দেন এহেন গো সেনা দেন ডিপ্লোমা নিম্মাতি নিম্মা পদে মাজি ফে দাম বাজাতি দে মাজি ফে দাম তে জিমা মি আদম তে চিকো তে কি এগে দাস্তা তমে মাহা কো সামা দিবলাসে 270 রুপিয়া দিবলাসে 300 রুপিয়া মাস নি মুনি মা দেনা মে তিমন্না মিহেন গো দেন মিহেন নাগা দে মা গো তে কি মাস নি মুনা স্নুয়েল লিবে দত্তে কি সাজিফা কা দামি হেন নো হাম কুদিন বাটা মে ওলেনি মি দেন নিম মাস নি মুনি মা একলা নুয়েল লিবে তে মিনে কা নু কেরেনি তা দত্তা

0: नहीं आज नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है।
1: थार में चाय तेरा सर।
0: ओके okay.

0: थुरास थुरास
1: थुरास ऐ तारीका अहर मेंग बहा सगाफता आध कादाय के तेरे का आध बावर घंटे तके हुरे अडवाहा लंबे नम ता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिविराजे का ट्यून कोला अंगार दो घावीर फाहिज जहर बुरास दो घावीर हाथरोगड़ फनेरा का अधि आदित दो घावीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ों

0: कॉर्पोरेट रोग है, तेरे हार्डवेयर में कोई सॉफ्ट फीलिंग्स ही नहीं।
1: सॉफ्टनेस है यार, झुके दे।
2: ये है मोस्ट वांटेड मुन्ना,
1: पागल मुझसे शादी करना चाहता है। डू समथिंग विद योर लाइफ, सिर्फ वेस्ट क्यों करना चाहते हो किसी का हस्बैंड बनके? हस्बैंड नहीं, ये मेरी वाइफ बनना चाहता है।
3: पागल हो गए हो तुम? औरत की कमाई पर जियोगे? मर्द हो तुम? अगर भूल गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो।
1: सेक्स हो गया ना, इम्पोर्टेंट बिफोर कमिटमेंट।
0: अच्छी सुनते हो, रात को ना लेट आना आराम से, कोई जल्दी नहीं।
1: कैसा पति है तू? एक अबला नारी को जालिम दुनिया में रोजी रोटी कमाने भेजते हुए शर्म नहीं आती?
0: पैसे चाहिए घर चलाने के लिए।
1: तेरा यह धर्मेंद्र वाला साहब पहली बार देखकर मेरे अंदर कुछ हो रहा है।
0: धर्मेंद्र?

0: Kareena Kapoor ge a film Daira ge trailer mihar miwani belun terina du kolafa mimahu ge ashara ga cinema taka gennang hamje hifawa mi film ga ena kulefawani fulu hekerolu hushala deni Aishat Naima Kareena Kapoor ge a film Daira ge trailer mihar miwani belun terina du kolafa Mimahuge ashara ga cinema taka gennang hamajefawa mi film ga ena kulefawani fulu hekkerolu Kareena ge turun actor Prithvi Raj Sukmaran ves fulu hekkerolu fennane Daira ki Meghna Gulzar direct kufawa crime drama e mi film ki mi detar ves Meghna yako alam maseke kuri film e ekmaku e detarin kurim ves film tahuga fulu hunge rol kulefawe Kareena fuluhunge role ta kunu film ta kaki deha savvihuge da bakim hammada sa deha swihwana haruge angrezi medium Meghna ge MFA film ki viki kosha laiku deha stevi huga gnesti same bahadur
1: side laga
2: kya
3: आंखें देखो मैडम इसकी एकदम जानवर जैसी
4: ऐसी थोड़ी ना इनको बॉर्न क्रिमिनल बोलते हैं
5: कैन यू टेल अस क्या हुआ कैसे हुआ
6: डिटेक्टिव हो ना पता लगा लो
7: ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं बना जो पीछे सबूत ना छोड़े
8: पूरा एक दिन बीत गया तुम लोग एक टुकड़ा एविडेंस नहीं ला पाए डीएनए रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है
9: 14 नवंबर तो कहाँ है
5: टेल मी द ट्रूथ
6: अच्छी स्टोरी बना
10: मैं सच बोल रहा स्टोरी तो आप बना रहे हो
11: सच तो ये है कि हम न जान लेने वालों को सजा देते हैं पर न जान बचाने वालों को शाबाशी

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो हो केरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार हम एकनी दिवे राज्य के आडू
2: कोम्मे उमुरका
3: कोम्मे फांतियका
2: कोम्मे गिंतियका दिवे राज्य के आडू इंहा सतरसे के साड़ी स्नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
3: अड्डी हनोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड गाइडिंग में दमोंगली वे देगड़ी 30 मिनट मी दिवे राज्य के आडू
4: हिनी तुम्बेला
1: हिनी तुम्बेला